0: ஒலித்தந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைகானம் நிகழ்ச்சி. இன்னும் சில நொடிகளில் ரவிவாசிரி அகில் பாரதிய சங்கீத் சபா இசை நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: ஆகாஷ்வாணி ஹே. ரவிவாசரி அகில பாரதிய சங்கீத் சபா மே ஆஜ் ராத் பிரஸ்துத் ஹே சிதார் வாதன். கலாகார் ஹே பண்டித் ஹரு சங்கர் பட்டாச்சாரியா. ஜானே மானே சங்கீதஜ்யோ வாலி விசிஷ்ட பரிவார் மே ஜன்மே பண்டித் ஹரு சங்கர் பட்டாச்சாரியா கே தாதா ஸ்ரீ லால் மோகன் பட்டாச்சாரியா ஜானே மானே சிதார் வாதக் தே, ஜின்ஹோனே இஸ் சங்கீதிக் விராசத் கீ நீவ் ரக்கி. அப்படி பிதா ஸ்ரீ கங்கா சங்கர் பட்டாச்சாரியா கே மார்க்தர்ஷன் மே பண்டித் ஹரு சங்கர் பட்டாச்சாரியா நே ஷுருவாத்தி தாலீம் ஹாசில் கீ. ஆகே சல்கர் ஆப்கோ விஷ்ணுபூர் கரானா கே ஸ்ரீ முரளிதர் தாக்கூர் சே சீக்னே கா சு அவசர் பி பிராப்த ஹுவா. 1968 மே பண்டித் ஹரு சங்கர் பட்டாச்சாரியா உஸ் சமய கே பம்பை யானி மும்பை ரவானா ஹுவே. आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया. आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है. आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं. पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं. साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है. आज रात पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय.
2: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरु शंकर भट्टाचार्य. बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया Sri Lal Mohan Bhattacharya is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हर शंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी बिगिनिंग विद आलाप। The composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Teen.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.